0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव के जीवन में आध्यात्मिक तटस्थता एक वह पायदान है, एक वह स्थिति जहां कोई भी व्यक्ति अपने को किसी भी बातों और चीजों से विचलित होता नहीं पाता है। चाहे परिस्थितियां सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह अपने में सारी चीजों को एक ही मनोभाव से शांति में ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ना तो मौत का भय होता और ना ही जीवन के प्रति कोई मोह। उसके जीवन में चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना आए, वह अपने में स्थिर और अडिग बना रहता है। श्रोताओं, लेकिन जीवन के उस मुकाम तक पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। वर्ष के 25वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम आध्यात्मिक तटस्थता की एक विषय वस्तु को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में कितना विकास किया है। हम मौत और जीवन की परिस्थितियों को किस रूप में लेते हैं। वे कौन सी बातें हैं जो हमें स्वतः ही जीवन में विचलित कर देती हैं। आध्यात्मिक विचलन की स्थिति में हम अपने में किस तरह का व्यवहार और वर्ताव करते हैं।
1: यीशु ने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ एक दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह एक घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो। उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों को सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए तो एक घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो एक घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, उन्हें एक एक दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ एक दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे।
0: श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वरीय सानिध्य को देखने और उनमें बने रहने को मदद करे, जिससे हम अपने दैनिक जीवन की बातों और घटनाओं को एकात्मकता के भाव से बिना विचलित और प्रभावित हुए स्वीकार कर सकें। श्रोताओ, नबी इसायस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के निकट रहने का आह्वान करता है। यह हमें उनकी दुहाई देने को कहता है। हमारा ऐसा करना हमें पापों और बुराइयों से बचे रहने में मदद करता है। ईश्वर के निकट रहने और उनकी दुहाई देने के फलस्वरूप ईश्वर हम पर अपनी करुणा और दयामयी निगाहें फेरते हैं, क्योंकि वे दया के सागर हैं। उनकी दया की बदौलत हम अपने को उनके विचारों के अनुरूप संचालित होता पाते हैं, और उनके विचार यद्यपि हमारे विचार नहीं होते, हम उन्हें स्वीकारने के योग्य होते हैं। हम ईश्वर के विचारों की थाह नहीं ले सकते हैं और ना ही उन्हें अपने जीवन में समझ सकते हैं, लेकिन उनके सानिध्य में हमारा रहना उसी भांति जीवन और हमें हरा भरा बनाए रखता है जैसे कि नदी के तट पर लगाए गए वृक्षों। हम जीवन के दुख तकलीफों रूपी तेज धूप में अपने को प्रभावित नहीं होता पाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम और करुणा की शीतल जलधारा हमें पोषित करते रहती है। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमें इसे और भी अधिक गहराई से समझने में मदद करता है, जहां हम जीवन और मृत्यु के बारे में संत पौलुस के मनोभावों को सुनते हैं। वे दोनों ही परिस्थितियों में अपने को आनंदित पाते हैं, क्योंकि वे मसीह के सुसमाचार अनुरूप आचरण करते हैं। ईश्वर के निकट रहना उन्हें किसी भी चीज, जीवन या मरण के लिए सदैव तैयार रखता है, जो उनकी आध्यात्मिक तटस्थता है। श्रोताओं, वही आज के सुसमाचार में हमारे लिए इस बात की झलक मिलती है कि किस भांति ईश्वर से दूर रहना हमें उनकी बातों और विचारों को समझने में असक्षम बनाता है। ईश्वर अपने में उदार और न्यायी हैं। उनके प्रेम की सीमा हमारे विचारों से नहीं आंकी जा सकती है। उन्हें हम अपने विचारों के अनुरूप संचालित करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की निगाहों में हम सभी बराबर हैं, अतः वे किसी के संग पक्षपात या अन्याय नहीं करते हैं। वही मानव के रूप में हम अपने मेहनतपूर्ण कार्यों हेतु अधिक पाने की चाह रखते हैं, जबकि स्वामी हमसे कम और अधिक का तर्क वितर्क नहीं करते हैं। कम और अधिक की भावना हमारे मानवीय सोचने विचारने के मनोभावों से उत्पन्न होती है, जहां हम अपने को दूसरों से बेहतर और अधिक महत्वपूर्ण होने की सोचते हैं। श्रोताओं, आज का सुसमाचार हमें ईश्वर की उदारता पर ईर्ष्या और द्वेष नहीं करने का आह्वान करता है। यह हमें अपने जीवन में अपने कार्यों को निष्ठा में पूरा करने और फल प्राप्ति को ईश्वर के हाथों में छोड़ने का संदेश देता है, जो हमारे कार्य करने के तौर तरीकों को जानते हैं। हम स्वामी से मांग नहीं कर सकते हैं कि हमने इन सारी चीजों को किया है, अतः हमें उसी अनुपात में दिया जाए। हम ईश्वर की उदारता पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके मनोभावों को अपनी सोच के अनुरूप बदलने का दबाव ही डाल सकते हैं। यह हमारे हृदय को विस्तृत करने की चुनौती देता है, जहां हम दूसरों को मिले गुणों और क्षमताओं से रूठते नहीं, बल्कि आनंदित होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भी उसी रूप में अपने वरदानों से विभूषित किया है। ऐसा केवल तब होता है जब हम अपने को ईश्वर के निकट लाते और अपने को सदैव उनके सानिध्य में पाते हैं। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उनके बेटे से निवेदन करें कि वे हमें अपनी कृपा से भर दें, जिससे हम फलों की चाह रखे बिना अपने दैनिक जीवन के उत्तरदायित्वों को उनकी महिमा और स्तुति हेतु पूरा कर सकें, जिसके लिए पिता ने हमें जीवन का वरदान दिया है।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें आगामी 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा करेंगे, जो पोप बनने के बाद उनकी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा होगी। शुक्रवार 18 सितंबर को वैटिकन प्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने पोप की यात्रा के बारे बताया, जो उन्हें पेरिस, लूर्द एवं उत्तर पूर्वी शहर मेट्स ले जाएगी। फ्रांस नवा देश होगा जहां पोप लियो यात्रा करेंगे और इसमें देश के अधिकारियों और राज्य के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात, युवाओं और स्थानीय कलीसिया के पुरोहितों से मुलाकात, चैरिटी केंद्रों का दौरा और यूनेस्को मुख्यालय का दौरा आदि कार्यक्रम शामिल होंगे। उनके सभी भाषण, प्रवचन और घोषणाएं फ्रेंच में होंगी, सिवाय यूनेस्को में उनके भाषण के, जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में होगा। मिट्स में टू द रूट ऑफ यूरोप फॉर पीस एंड यूनिटी मीटिंग में भी उनका भाषण पूरी तरह अंग्रेजी में होगा। मत्तेओ ब्रूनी ने बतलाया कि पोप फ्रांसीसी समाज, इसके लोगों, इसकी संस्कृति, इसके इतिहास के साथ साथ इसके विश्वास एवं एक ऐसी कलीसिया से भी मिलेंगे जो देश के सबसे कमजोर बेटे बेटियों, सबसे गरीब लोगों के लिए बहुत अधिक समर्पित है। उन्होंने एक ऐसे देश के बारे में भी बात की जो समाज, मानवता और जीवन तथा विज्ञान, तकनीकी तरक्की एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुद से सवाल पूछ रहा है, और एक ऐसे देश के बारे में भी चर्चा की जो दुनिया के लिए खुला है, और कहा कि वहां संघर्ष की स्थितियों का जिक्र हो सकता है। ब्रूनी ने फ्रांसीसी समाज में कलीसिया की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने फ्रांसीसी कलीसिया के इतिहास एवं समृद्धि पर ध्यान दिया, जिसने हाल के सालों में बपतिस्मा लेने वालों की संख्या में वृद्धि देखी है, जहां 2026 के पास्का के अवसर पर कुल 13,000 वयस्कों ने बपतिस्मा लिया। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक ने फिर बताया कि यूनेस्को एक ऐसी जगह है जहां मानवता खुद पर, अपने इतिहास पर, अपने भविष्य पर सोचती है और शांति के माध्यम से कला और शिक्षा के मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, क्योंकि यह संस्कृति से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वैटिकन एवं यूनेस्को 2027 में राजनयिक संबंध के 75 साल पूरा होने के जश्न मनाएंगे। अंत में मत्तेओ ब्रूनी ने यूरोप, उसके भविष्य और उसके अतीत को यात्रा के अंतिम हिस्से सीमावर्ती शहर मेट्स में एक जरूरी थीम के तौर पर बताया, जिसमें एकता, विविधता, शांति और दूसरी संस्कृतियों के लिए खुलापन आदि विषय शामिल होंगे। पोप के साथ अन्य प्रतिनिधियों में संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टोलेंटिनो डिमेंडो का, प्रेरितिक सिग्नातुरा के प्रीफेक्ट कार्डिनल डोमिनिक मेम्बर्ती, अंतर्धार्मिक वार्ता विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल जोर्ज गुआकाट और धर्मदक्षों के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्मदक्ष फिलिपो इयानोन शामिल होंगे। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे उस समय न्यूयॉर्क में होंगे। पोप लियो 14वें फ्रांस की इस यात्रा में अपने पूर्वाधिकारियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं।
1: संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में टूरिन 2025 वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग लेने वाले करीब 150 इटालियन स्पेशल ओलंपिक एथलीटों का स्वागत किया। स्पेशल ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है। संत पापा ने कहा, मुझे आपसे मिलकर और इस समय आपके द्वारा अनुभव की गई खेल प्रतियोगिताओं की खुशी को आपके साथ साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे भी खेल बहुत पसंद है और मैं इसके महान रचनात्मक मूल्य का कायल हूँ, क्योंकि यह व्यक्ति को महान और प्रामाणिक मूल्यों में शिक्षित करता है। इसके अलावा यह प्रतिस्पर्धी और शौकिया दोनों गतिविधियों में स्वयं एथलीटों के जीवन में इन मूल्यों का गवाह बनने का अवसर प्रदान करता है। खेलों में शामिल होने का मतलब है पूरी गंभीरता और कड़ी मेहनत से जुटना और फिर उस लगन के नतीजों को ईमानदारी, भरोसे और खुलेपन, टीम भावना और हिम्मत के साथ साझा करना, आप यह सब करते हैं और इसकी खूबसूरती को एक बहुत ही खास तरीके से दिखाते हैं। संत पापा लियो ने स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के एक समूह से मिलते हुए संत पापा फ्रांसिस की बात को याद करते हुए कहा कि खेल उन सार्वजनिक भाषाओं में से एक है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और शारीरिक अंतरों से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करती है, उन्हें एक ही खेल में भागीदार बनाती है और जीत व हार दोनों में साझेदार बनाती है। मैं आपके यहाँ आने, आपके साथ आने वाली सच्ची खुशी और आपके जरिए मिलने वाले सकारात्मक संदेश के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना संदेश समाप्त करते हुए संत पापा ने उन्हें माता मरियम और संत पियर जॉर्जो प्रसाती की मध्यस्थता में सौंपा और कहा कि संत जॉर्जो आप ही की तरह एक युवा खिलाड़ी थे जो यीशु से प्रेम करते थे और जानते थे कि खेल के मूल्यों को एक अच्छे और उदार जीवन यानी एक पवित्र जीवन में कैसे बदला जाए, और यह सब उन्होंने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर किया। और संत पापा लियो 14वें ने रोम के धर्म प्रांतीय सभा से कहा कि वे अपने नए प्रेरितिक कार्य वर्ष की शुरुआत केवल नई पहलें जोड़ने के बजाय अपनी गतिविधियों को सुनने, समझने और उनका मूल्यांकन करने में समय लगाकर करें। शुक्रवार को संजोन लातेरन महागिरजा घर में धर्म प्रांतीय सभा को संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा कि वे कोई नया प्रेरितिक कार्यक्रम पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेरितिक कार्य मूल्यांकन का एक साझा तरीका का प्रस्ताव दे रहे हैं। संत पापा ने धर्म प्रांत के प्रेरितिक जीवन की जांच के लिए तीन मुख्य क्षेत्रों की पहचान की, मसीह से मिलना और दूसरों को उनसे मिलने में मदद करना, समुदाय का निर्माण करना और शहर में रहना और उसकी सेवा करना। रोम सिर्फ कलीसिया की गतिविधियों की पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि उसके मिशन की जगह है। कलीसिया को शहर के उम्मीदों, कमजोरियों और सवालों को समझने और यह पहचानने के लिए बुलाया गया है कि सुसमाचार कहाँ जवाब दे सकता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, मानव के जीवन में आध्यात्मिक तटस्थता एक वह पायदान है, एक वह स्थिति जहां कोई भी व्यक्ति अपने को किसी भी बातों और चीजों से विचलित होता नहीं पाता है। चाहे परिस्थितियां सकारात्मक हो या नकारात्मक, वह अपने में सारी चीजों को एक ही मनोभाव से शांति में ग्रहण करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ना तो मौत का भय होता और ना ही जीवन के प्रति कोई मोह। उसके जीवन में चाहे कोई भी स्थिति क्यों न आए, वह अपने में स्थिर और अडिग बना रहता है। श्रोताओं, लेकिन जीवन के उस मुकाम तक पहुंचना हर किसी के वश की बात नहीं होती है। वर्ष के 25वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम आध्यात्मिक तटस्थता की एक विषय वस्तु को पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की परख करें कि हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में कितना विकास किया है। हम मौत और जीवन की परिस्थितियों को किस रूप में लेते हैं। वे कौन सी बातें हैं जो हमें स्वतः ही जीवन में विचलित कर देती हैं। आध्यात्मिक विचलन की स्थिति में हम अपने में किस तरह का व्यवहार और वर्ताव करते हैं।
1: यीशु ने अपने चेलों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ एक दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह एक घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो। उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों को सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए तो एक घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो एक घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, उन्हें एक एक दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने उन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ एक दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन में ईश्वरीय सानिध्य को देखने और उनमें बने रहने को मदद करे, जिससे हम अपने दैनिक जीवन की बातों और घटनाओं को एकात्मकता के भाव से बिना विचलित और प्रभावित हुए स्वीकार कर सकें। श्रोताओं, नबी इसायस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के निकट रहने का आह्वान करता है। यह हमें उनकी दुहाई देने को कहता है। हमारा ऐसा करना हमें पापों और बुराइयों से बचे रहने में मदद करता है। ईश्वर के निकट रहने और उनकी दुहाई देने के फलस्वरूप ईश्वर हम पर अपनी करुणा और दयामयी निगाहें फेरते हैं, क्योंकि वे दया के सागर हैं। उनकी दया के बदौलत हम अपने को उनके विचारों के अनुरूप संचालित होता पाते हैं, और उनके विचार यद्यपि हमारे विचार नहीं होते, हम उन्हें स्वीकारने के योग्य होते हैं। हम ईश्वर के विचारों की थाह नहीं ले सकते हैं और ना ही उन्हें अपने जीवन में समझ सकते हैं, लेकिन उनके सानिध्य में हमारा रहना उसी भांति जीवन और हमें हरा भरा बनाए रखता है, जैसे कि नदी के तट पर लगाए गए वृक्षों। हम जीवन के दुख तकलीफों रूपी तेज धूप में अपने को प्रभावित नहीं होता पाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय प्रेम और करुणा की शीतल जलधारा हमें पोषित करते रहती है। श्रोताओं, आज का दूसरा पाठ हमें इसे और भी अधिक गहराई से समझने में मदद करता है, जहां हम जीवन और मृत्यु के बारे में संत पौलुस के मनोभावों को सुनते हैं। वे दोनों ही परिस्थितियों में अपने को आनंदित पाते हैं, क्योंकि वे मसीह के सुसमाचार अनुरूप आचरण करते हैं। ईश्वर के निकट रहना उन्हें किसी भी चीज, जीवन या मरण के लिए सदैव तैयार रखता है, जो उनकी आध्यात्मिक तटस्थता है। श्रोताओं, वही आज के सुसमाचार में हमारे लिए इस बात की झलक मिलती है कि किस भांति ईश्वर से दूर रहना हमें उनकी बातों और विचारों को समझने में असक्षम बनाता है। ईश्वर अपने में उदार और न्यायी है। उनके प्रेम की सीमा हमारे विचारों से नहीं आंकी जा सकती है। उन्हें हम अपने विचारों के अनुरूप संचालित करने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईश्वर की निगाहों में हम सभी बराबर हैं, अतः वे किसी के संग पक्षपात या अन्याय नहीं करते हैं। वही मानव के रूप में हम अपनी मेहनतपूर्ण कार्यों हेतु अधिक पाने की चाह रखते हैं, जबकि स्वामी हमसे कम और अधिक का तर्क वितर्क नहीं करते हैं। कम और अधिक की भावना हमारे मानवीय सोचने विचारने के मनोभावों से उत्पन्न होती है, जहां हम अपने को दूसरों से बेहतर और अधिक महत्वपूर्ण होने की सोचते हैं। श्रोताओं, आज का सुसमाचार हमें ईश्वर की उदारता पर ईर्ष्या और द्वेष नहीं करने का आह्वान करता है। यह हमें अपने जीवन में अपने कार्यों को निष्ठा में पूरा करने और फल प्राप्ति को ईश्वर के हाथों में छोड़ने का संदेश देता है, जो हमारे कार्य करने के तौर तरीकों को जानते हैं। हम स्वामी से मांग नहीं कर सकते हैं कि हमने इन सारी चीजों को किया है, अतः हमें उसी अनुपात में दिया जाए। हम ईश्वर की उदारता पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके मनोभावों को अपनी सोच के अनुरूप बदलने का दबाव ही डाल सकते हैं। यह हमारे हृदय को विस्तृत करने की चुनौती देता है, जहां हम दूसरों को मिले गुणों और क्षमताओं से रूठते नहीं बल्कि आनंदित होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें भी उसी रूप में अपने वरदानों से विभूषित किया है। ऐसा केवल तब होता है जब हम अपने को ईश्वर के निकट लाते और अपने को सदैव उनके सानिध्य में पाते हैं। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा उनके बेटे से निवेदन करें कि वे हमें अपनी कृपा से भर दें, जिससे हम फलों की चाह रखे बिना अपने दैनिक जीवन के उत्तरदायित्वों को उनकी महिमा और स्तुति हेतु पूरा कर सकें, जिसके लिए पिता ने हमें जीवन का वरदान दिया है।

0: आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें आगामी 25 से 28 सितंबर तक फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा करेंगे, जो पोप बनने के बाद उनकी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रेरितिक यात्रा होगी। शुक्रवार 18 सितंबर को वैटिकन प्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस कार्यालय के निदेशक मत्तेओ ब्रूनी ने पोप की यात्रा के बारे बताया, जो उन्हें पेरिस, लूर्द एवं उत्तर पूर्वी शहर मेट्स ले जाएगी। फ्रांस नवा देश होगा जहां पोप लियो यात्रा करेंगे और इसमें देश के अधिकारियों और राज्य के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात, युवाओं और स्थानीय कलीसिया के पुरोहितों से मुलाकात, चैरिटी केंद्रों का दौरा और यूनेस्को मुख्यालय का दौरा आदि कार्यक्रम शामिल होंगे। उनके सभी भाषण, प्रवचन और घोषणाएं फ्रेंच में होंगी, सिवाय यूनेस्को में उनके भाषण के, जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों में होगा। मिट्स में टू द रूट ऑफ यूरोप फॉर पीस एंड यूनिटी मीटिंग में भी उनका भाषण पूरी तरह अंग्रेजी में होगा। मत्तेओ ब्रूनी ने बतलाया कि पोप फ्रांसीसी समाज, इसके लोगों, इसकी संस्कृति, इसके इतिहास के साथ साथ इसके विश्वास एवं एक ऐसी कलीसिया से भी मिलेंगे जो देश के सबसे कमजोर बेटे बेटियों, सबसे गरीब लोगों के लिए बहुत अधिक समर्पित है। उन्होंने एक ऐसे देश के बारे में भी बात की जो समाज, मानवता और जीवन तथा विज्ञान, तकनीकी तरक्की एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुद से सवाल पूछ रहा है, और एक ऐसे देश के बारे में भी चर्चा की जो दुनिया के लिए खुला है, और कहा कि वहां संघर्ष की स्थितियों का जिक्र हो सकता है। ब्रूनी ने फ्रांसीसी समाज में कलीसिया की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने फ्रांसीसी कलीसिया के इतिहास एवं समृद्धि पर ध्यान दिया, जिसने हाल के सालों में बपतिस्मा लेने वालों की संख्या में वृद्धि देखी है, जहां 2026 के पास्का के अवसर पर कुल 13,000 वयस्कों ने बपतिस्मा लिया। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निदेशक ने फिर बताया कि यूनेस्को एक ऐसी जगह है जहां मानवता खुद पर, अपने इतिहास पर, अपने भविष्य पर सोचती है और शांति के माध्यम से कला और शिक्षा के मूल्य पर ध्यान दिया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, क्योंकि यह संस्कृति से बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा वैटिकन एवं यूनेस्को 2027 में राजनयिक संबंध के 75 साल पूरा होने के जश्न मनाएंगे। अंत में मत्तेओ ब्रूनी ने यूरोप, उसके भविष्य और उसके अतीत को यात्रा के अंतिम हिस्से सीमावर्ती शहर मेट्स में एक जरूरी थीम के तौर पर बताया, जिसमें एकता, विविधता, शांति और दूसरी संस्कृतियों के लिए खुलापन आदि विषय शामिल होंगे। पोप के साथ अन्य प्रतिनिधियों में संस्कृति एवं शिक्षा विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल जोस टोलेंटिनो डिमेंडो का, प्रेरितिक सिग्नातुरा के प्रीफेक्ट कार्डिनल डोमिनिक मेंबर्ती, अंतर्धार्मिक वार्ता विभाग के अध्यक्ष कार्डिनल जोर्ज गुआकाट और धर्माध्यक्षों के लिए गठित विभाग के प्रीफेक्ट महाधर्माध्यक्ष फिलिपो इयानोन शामिल होंगे। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वे उस समय न्यूयॉर्क में होंगे। पोप लियो 14वें फ्रांस की इस यात्रा में अपने पूर्वाधिकारियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं।
1: संत पापा लियो 14वें ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में टूरिन 2025 वर्ल्ड विंटर गेम्स में भाग लेने वाले करीब 150 इटालियन स्पेशल ओलंपिक एथलीटों का स्वागत किया। स्पेशल ओलंपिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है। संत पापा ने कहा, मुझे आपसे मिलकर और इस समय आपके द्वारा अनुभव की गई खेल प्रतियोगिताओं की खुशी को आपके साथ साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे भी खेल बहुत पसंद है और मैं इसके महान रचनात्मक मूल्य का कायल हूँ, क्योंकि यह व्यक्ति को महान और प्रामाणिक मूल्यों में शिक्षित करता है। इसके अलावा यह प्रतिस्पर्धी और शौकीय दोनों गतिविधियों में स्वयं एथलीटों के जीवन में इन मूल्यों का गवाह बनने का अवसर प्रदान करता है। खेलों में शामिल होने का मतलब है पूरी गंभीरता और कड़ी मेहनत से जुटना और फिर उस लगन के नतीजों को ईमानदारी, भरोसे और खुलेपन, टीम भावना और हिम्मत के साथ साझा करना। आप यह सब करते हैं और इसकी खूबसूरती को एक बहुत ही खास तरीके से दिखाते हैं। संत पापा लियो ने स्पेशल ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के एक समूह से मिलते हुए संत पापा फ्रांसिस की बात को याद करते हुए कहा कि खेल उन सार्वजनिक भाषाओं में से एक है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और शारीरिक अंतरों से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट करती है, उन्हें एक ही खेल में भागीदार बनाती है और जीत व हार दोनों में साझेदार बनाती है। मैं आपके यहाँ आने, आपके साथ आने वाली सच्ची खुशी और आपके जरिए मिलने वाले सकारात्मक संदेश के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना संदेश समाप्त करते हुए संत पापा ने उन्हें माता मरियम और संत पियर जॉर्जो प्रसाती की मध्यस्थता में सौंपा और कहा कि संत जॉर्जो आप ही की तरह एक युवा खिलाड़ी थे जो यीशु से प्रेम करते थे और जानते थे कि खेल के मूल्यों को एक अच्छे और उदार जीवन यानी एक पवित्र जीवन में कैसे बदला जाए, और यह सब उन्होंने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर किया। और संत पापा लियो 14वें ने रोम के धर्म प्रांतीय सभा से कहा कि वे अपने नए प्रेरितिक कार्य वर्ष की शुरुआत केवल नई पहलें जोड़ने के बजाय अपनी गतिविधियों को सुनने, समझने और उनका मूल्यांकन करने में समय लगाकर करें। शुक्रवार को संजोन लातेरन महागिरजाघर में धर्म प्रांतीय सभा को संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा कि वे कोई नया प्रेरितिक कार्यक्रम पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेरितिक कार्य मूल्यांकन का एक साझा तरीका का प्रस्ताव दे रहे हैं। संत पापा ने धर्म प्रांत के प्रेरितिक जीवन की जांच के लिए तीन मुख्य क्षेत्रों की पहचान की: मसीह से मिलना और दूसरों को उनसे मिलने में मदद करना, समुदाय का निर्माण करना और शहर में रहना और उसकी सेवा करना। रोम सिर्फ कलीसिया की गतिविधियों की पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि उसके मिशन की जगह है। कलीसिया को शहर के उम्मीदों, कमजोरियों और सवालों को समझने और यह पहचानने के लिए बुलाया गया है कि सुसमाचार कहाँ जवाब दे सकता है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: क्रूस का चिन्ह
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।
0: प्रेरितों का धर्मसार
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: dorme, अवरुद्ध होकर न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद के दूसरा भेद। माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
1: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा।

0: हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
1: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ,

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
1: मतलब पापियों के मन फिराव
0: हे
1: के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु येसु मंदिर में पाए जाते हैं,
1: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल येसु।
2: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
2: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
1: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके, आमीन।
3: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में पोलिश मिशनरी धर्म बहन की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। येसु ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 14। मिशनरी सिस्टर क्रिसोलोगा मिंक का जीवन येसु के इन शब्दों से मेल खाता है। पुलार भाषा में नेने सुकाबे का अर्थ है बच्चों की माँ। ये नाम पोलिश मिशनरी सिस्टर क्रिसोलोगा मिंक SMCB के साथ जुड़ा है, जिन्होंने सेनेगल के वेलिंगारा में बच्चों के लिए एक कुपोषण केंद्र खोला है। बचपन से ही सिस्टर क्रिसोलोगा के दो सपने थे, एक नर्स बनना और एक मिशनरी बनना। दोनों ही सपने उनके धर्म संघ के बुलाहट में पूरे हुए। उन्होंने संत चार्ल्स बोरोमियो की दया की धर्म बहनों के धर्म संघ में प्रवेश किया, जहाँ तीन परम्परागत व्रतों के अलावा एक चौथा व्रत भी लिया जाता है, करुणा का व्रत। यही व्रत सिस्टर क्रिसोलोगा के मिशनरी बुलाहट का आधार स्तंभ बन गया। सेनेगल में मिशनरी के रूप में पहले दिन से उन्होंने गरीबी और भुखमरी का सामना किया, खासकर बच्चों के बीच। वार्षिक पोषण रिपोर्ट के अनुसार सेनेगल में 5 साल से कम उम्र के 10 में से 1 बच्चा बहुत ज्यादा कुपोषण से जूझ रहा है, और 6 से 23 महीने के सिर्फ 10% बच्चों को ही ठीक ठाक खाना मिल पाता है। इसके अलावा बच्चे पैदा करने की उम्र वाली 52% औरतें एनीमिया से जूझ रही हैं, इसलिए भूखी माताएं बहुत कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं, जिससे बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। सिस्टर क्रिसोलोगा बताती हैं, जब वे वेलिंगारा क्लिनिक में नर्स के रूप में सेवा दे रही थीं, माताएं अक्सर अपने बच्चों के साथ आती थीं। बच्चे मुश्किल स्थिति में होते थे। कोल्टा का दौरा करने पर उन्होंने वहां कुपोषण के शिकार बच्चों का केंद्र देखा, जिसको उनके ही धर्म संघ द्वारा खोला गया था। तब उन्हें महसूस हुआ कि वेलिंगारा में भी ऐसे ही केंद्र की जरूरत है। 13 सितंबर 1993 को सिस्टर ने वेलिंगारा में कुपोषित बच्चों के लिए सेंटर शुरू किया। शुरू से ही इसके विकास में कई चमत्कार हुए। मिशनरी बहन याद करती हैं कि शुरू में सिर्फ 2 छोटे कमरे थे, एक ऑफिस एवं गोदाम का काम करता था और दूसरे में 8 बेड थे। पहली बारिश के बाद उस जगह में पानी भर गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि उन्हें एक नई जगह ढूंढनी होगी। वे महापौर के पास गए और महापौर ने उन्हें एक खाली बिल्डिंग दी। यह बिल्कुल अव्यवस्थित स्थिति में था, लेकिन उसमें बिजली और पानी था, इसलिए वे खुश हो गए। केंद्र में बच्चे चिकित्सा एवं पोषण पाने आते हैं। कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं और निर्जलित स्थिति के कारण रो भी नहीं सकते, और कुछ अर्ध सुस्त स्थिति में। धाम बहनों ने युवा माताओं को अपने बच्चों की देखभाल करना सिखाया। उन्हें उनकी आदतों एवं धारणाओं को बदलने में काफी समय लगा। ये माताएं गाँव में स्वच्छ जल के बिना कठिन परिस्थिति में रहती हैं। कुछ लोग साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर चलकर धर्म बहनों तक पहुंचती हैं। पिछले कुछ ही सालों में लगभग 20,000 बच्चे केंद्र में आए हैं। दुख की बात है कि कुछ शिष्यों को बहुत देर से लाया गया। सौभाग्य से जैसे जैसे देश का सड़क और बुनियादी ढांचा विकसित हुआ, स्थिति में सुधार हुआ, मानसिकता भी धीरे धीरे बदलने लगी। महिलाओं ने ना सिर्फ अपने बच्चों की देखरेख करना सीखा, बल्कि अपनी गरिमा को भी महत्व देना सीखा। ईश्वर अपनी कृपा द्वारा लोगों के माध्यम से काम करते हैं। धम बहन याद करती हैं कि उनके पास हमेशा बच्चों के लिए खाना नहीं होता था, लेकिन ठीक उसी समय पर ईश्वर उनके रास्ते पर किसी न किसी को लाते थे। उदाहरण के लिए, फ्रांस में मिशेल नॉरेक्स के साथ एक मीटिंग से वेलिंगारा के बच्चे फाउंडेशन बनाने का रास्ता खुला, जिससे फंड जमा करने में मदद मिली। एक बार जब वे सड़क पर चल रही थी तो सोच रही थी कि उस दिन बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, थोड़ा सा चावल बाकी है, आगे क्या होगा, पैसे लगभग नहीं थे। अचानक सड़क के उस पार दो महिला पर्यटकों ने आवाज दी, बातचीत शुरू हुई और वे उन्हें अपना सेंटर ले गए। जब उन्होंने बच्चों को देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगी, अपनी जेब से सारे पैसे निकाल दिए और उस दिन से उन्होंने उनकी मदद करना कभी नहीं छोड़ा। सिस्टर को कई बच्चे याद हैं, लेकिन एक कहानी उनके दिल में गहराई से बसी है। मिशनरी बहन याद करती हैं, एक दिन कोनियागी काबिले की एक 16 साल की मुस्लिम माँ आई। उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था और लड़की मुश्किल से सांस ले रही थी, ठंडी लग रही थी। उसका वजन सिर्फ 600 ग्राम था। माँ ने आंसुओं के बीच धीरे से कहा, नीनी सुकाबे, मेरी मदद कीजिए। मैंने उससे कहा, हम प्रार्थना करेंगे, हम जो कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। मैंने बच्चे को गर्म करने की कोशिश की और एक फीडिंग ट्यूब डालने में कामयाब रही। माँ ने दूध निकाला और धम बहन ने उसे एक सिरिंज से इंजेक्ट किया। दो महीने बाद छोटी बच्ची का वजन 3 किलोग्राम हो गया और वह खुद दूध पी सकती थी। यह एक चमत्कार था। 6 साल बाद उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा। उसकी माँ ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, देखो यह नीनी सौकाबे है जिसने तुम्हें बचाया। इस तरह यहाँ कितनी जाने बची। सिस्टर ने सैकड़ों किलोमीटर दूर के गांव में झाड़ियों से होते हुए यात्रा की और खून की कमी से मर रहे बच्चों को मौके पर ही खून चढ़ाया। भले लोगों की मदद से धम बहन ने सेंटर को बड़ा किया और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक छोटा सा अतिथिशाला बनाया। जब उनसे उनके मुख्य सपने के बारे में पूछा गया तो सिस्टर क्रिसोलोगा मुस्कुराई और कहा, मेरा सपना है कि यह सेंटर बच्चों का हॉस्पिटल बन जाए और दुनिया में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने पोलिश मिशनरी धम बहन सिस्टर क्रिसोलोगा मिंक की कहानी सुनी, जो संत चार्ल्स बोरोमियो की दया की धम बहनों के धम संघ के सदस्य हैं और सेनेगल में बच्चों की मदद के कारण बच्चों की माँ कही जाती हैं। कहानी में धम बहनों के द्वारा ईश्वर की दया का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो एक सच्चे ख्रिस्ते के रूप में जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरणा देती है। कहानी को सिस्टर एलेना इसाकेनको SMCB ने लिखा है और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कटुता। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, मनुष्य का जीवन भावना प्रधान होता है। हम सब भावों से संचालित होते हैं। प्रेम, घृणा, क्रोध, क्षमा, हार जीत, श्रद्धा, संदेह का महत्व भावनाओं से ही होता है। किसी से प्यार होना सामान्य बात है, उसी तरह किसी से एक तरफा प्यार होना सामान्य है। लेकिन खुद को तकलीफ देना सही नहीं है। एक तरफा प्यार वाकई बहुत गहरा और अकेलापन देने वाला दर्द होता है, क्योंकि इसमें उम्मीद और अस्वीकृति का एहसास साथ चलता है। इसमें इंसान ना तो पूरी तरह आगे बढ़ पाता है और न ही पीछे हट पाता है। उस प्यार के रास्ते में आए अन्य व्यक्ति के प्रति मन में कड़वाहट या कटुता पाले जीवन की गाड़ी बढ़ती रहती है। जब भी उस व्यक्ति से आमना सामना होता है तो उस व्यक्ति के प्रति घृणा या कटुता बढ़ने लगती है। जाने अनजाने आप खुद को ही तकलीफ देते हैं। ऐसे में कटुता को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय खुद के प्रति क्षमा भाव अपनाना और अहंकार को त्यागना है। मन का मैल और कड़वाहट मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा, और किसी की गलती को माफ करने से मन का बोझ हल्का होता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका कटुता।
1: मम्मी, अब हमने छिपकर तो कुछ नहीं किया ना? अमित ने अपनी मम्मी जया को सब कुछ बता दिया और मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और यह भी नहीं छिपाया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं।
2: वीणा बेटा, मानती हूँ कि तुमने और अमित ने अपने अपने घर में सब कुछ बता दिया और हमसे कुछ नहीं छुपाया। यह बहुत अच्छी बात है और इसीलिए मैं अमित से तुम्हारी शादी के लिए भी तैयार हूँ।
1: मम्मी, आप तो शादी के लिए तैयार हैं, मगर अमित की मम्मी को न जाने किस बात की खुन्नस है हमसे कि हमारी शादी के लिए राजी ही नहीं हो रही है। आखिर न जाने कौन सी और क्या बात है मम्मी?
2: बात क्या है बेटा, एक गलत फहमी है बस।
1: ऐसी कौन सी गलत फहमी है जया आंटी को?
2: बेटा, किसी समय मैं और अमित की माँ जया एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे।
1: सच मम्मी? फिर
2: मैं और तुम्हारे पापा भी एक दूसरे को वैसा ही चाहते और पसंद करते थे जैसे तुम और अमित एक दूसरे को पसंद करते और चाहते हो।
1: फिर
2: क्या बेटा, जया भी तुम्हारे पापा को बहुत पसंद करती थी, लेकिन ये पसंद करना और चाहना एक तरफा ही था, क्योंकि तुम्हारे पापा सिर्फ मुझे ही चाहते थे। कॉलेज में जब तक रहे जया मुझसे अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब मेरी और तुम्हारे पापा की शादी हुई तब से जया मुझसे बात ही नहीं करती। उसने बात करना बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि उसका मानना है कि तुम्हारे पापा को मैंने उससे छीन लिया। बस तभी से वह मुझसे नाराज़ रहने लगी है।
1: क्या मम्मी, जया आंटी भी अभी तक कॉलेज के दिनों में ही जी रही है? बरसों पुरानी बात को लेकर वह आज भी घूम रही हैं? जब जिन पापा की वजह से वह आज भी आपसे कटुता रखती हैं, वह पापा भी अब हमारे बीच नहीं रहे?
2: अब ये तो अपनी अपनी समझ की बात है बेटा।
3: देखा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी शादी में मेरी मम्मी इतनी बाधा डाल रही हैं, तो कहीं हमें कोर्ट मैरिज ना करनी पड़ जाए।
1: नहीं अमित, तुम कुछ भी बोलो, कोर्ट मैरिज के पक्ष में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये भी कोई शादी हो यार।
3: मगर इसके सिवा और चारा भी क्या रह गया अब?
1: अच्छा अमित, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी मम्मी क्यों हमारी शादी के खिलाफ है।
3: तुम क्या जानती हो क्यों खिलाफ है मम्मी?
1: मुझे मेरी मम्मी ने बताया है कि जया आंटी और मेरे मम्मी पापा ये सभी एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, उधर तुम्हारी मम्मी भी मेरे पापा को बहुत पसंद करती थी। लेकिन पढ़ाई के बाद जब मेरे मम्मी पापा की शादी हो गई तो जया आंटी ने मम्मी से यह सोचकर कटुता पाल ली कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को उनसे छीन लिया है। बस तब से ही जया आंटी ने मेरी मम्मी से बातचीत ही बंद कर दी है।
3: ओह, तो यह बात है।
1: हाँ,
3: तभी तो मैं सोचा करता था कि मैं अच्छा वाला कमा रहा हूँ, अच्छी नौकरी है मेरी, तुम भी अच्छा कमा रही है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, फिर तकलीफ किस बात की है?
1: आंटी ने मन में मम्मी के लिए जो कटुता पाल रखी है वही कटुता ही आंटी को हमारी शादी में बाधा बना रही है।
3: तुम सही कह रही हो शिखा, लेकिन क्या अगर हमने मम्मी की मर्जी के विरुद्ध शादी की तो क्या तुम तैयार हो?
1: हाँ अमित, मैं तो तब भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं आंटी और अंकल दोनों के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूँगी। तुम कुछ भी बोलो यार अमित।
3: पापा ने तो कब से हाँ कर दी है, लेकिन बस मम्मी को मनाना ही बाकी रह गया है।
1: तो फिर अंकल को कहो ना कि वे आंटी को मनाएं।
3: तुम तो जानती हो मम्मी के आगे पापा की चलती कहाँ है।
1: फिर
3: चिंता ना करो तुम, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
4: देखो बेटा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शिखा जैसी लड़की मुझे पसंद नहीं है। फिर शादी के लिए दुनिया में क्या एक शिखा ही बची है तुम्हारे लिए? मैं उससे कहीं अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगी तुम्हारी।
3: आखिर आपको शिखा पसंद क्यों नहीं है?
4: मैं कह चुकी हूँ, पसंद नहीं है तो नहीं है। हर एक चीज़ का कारण नहीं होता है।
3: और बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता।
4: मैं कह चुकी हूँ तुमसे।
3: तो फिर मुझसे ही सुन लो वह कारण जिसकी वजह से आप शिखा से नफरत करती हैं। और वह कारण है अपनी कॉलेज लाइफ में आपका शिखा के पापा से एक तरफा प्यार में पड़ना और उनका शिखा की मम्मी से शादी कर लेना। बस इसी बात को आपने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया, इसीलिए आप अपनी उस हार को मेरी शादी से मना करके अपनी जीत में बदलना चाहती हैं।
4: ये क्या कह रहे हो बेटा तुम?
3: मैं सच कह रहा हूँ माँ, कभी कभी अतीत पर पड़ी समय की धूल को वर्तमान की आंधी भी उड़ा देती है और अतीत एक बार फिर सामने होता है।
4: तुम सच कहते हो बेटा, पर मेरी समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं।
3: यह इंसान की फितरत है माँ, जब वह हालातों से हार जाता है और उनका सामना नहीं कर पाता है तो उनसे समझौता कर लेता है।
4: मगर जिस कटुता को मैंने सालों साल अपने दिल की दीवारों में कैद करके रखा है, एक ही झटके में उसे दिल से निकाल कैसे सकती हूँ मैं?
3: आप किसी से नफरत और उसकी कटुता का बोझ कब तक यूं ही ढोती रहेंगी? आपने जब यह कटुता पाली होगी तब से लेकर अब तक नदियों में कितना पानी बहकर यहाँ से वहाँ हो गया और आप अब भी वहीं की वहीं खड़ी हैं।
4: मगर बेटा वो
3: आपने भी कभी प्यार किया है माँ, आपको उसी प्यार का वास्ता। किसी को पा लेने और किसी को खो देने की खुशी और दर्द आप अच्छी तरह से समझती हैं, मान भी जाओ माँ।
4: ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी खुशी में अब और अधिक बाधा नहीं बनना चाहती। कल हम शिखा के घर जरूर चलेंगे।
3: ओ माँ, यू आर अ ग्रेट मदर।
1: नमस्ते आंटी, आइए आइए। मम्मी देखो कौन आया है।
2: अरे जया, तुम आज यहाँ? आओ आओ बैठो।
3: नमस्ते आंटी।
2: नमस्ते बेटा। हाँ जया, और सुनाओ, आज मेरे गरीब खाने पर कैसे? मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देख के।
4: वीणा, मुझे भी तुमसे मिलकर उतनी ही खुशी हो रही है।
1: तो इस खुशी को गले मिलकर मनाओ।
4: कैसी हो वीणा तुम?
2: अच्छी हूँ, तुम सुनाओ।
4: क्या सुनाऊँ वीणा, ये वक्त ही है जो एक दूसरे से अलग भी कर देता है और एक दूसरे से मिला भी देता है। मुझे माफ़ कर देना वीणा, मैं तुम्हारे दुख का कारण बनती रही।
3: और अब आपकी खुशी का कारण बनने जा रही हैं आंटी।
4: हाँ वीणा, मुझे भी शिखा बेटी और अमित का रिश्ता मंजूर है।
2: अरे बधाई हो जया, ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ही ली।
4: इतने सालों के बाद मैं आज रात हल्की होकर बहुत बहुत सुख की नींद सो पाऊंगी, वरना मेरे सीने पर एक बोझ सा था जिसके लिए मैं इतने सालों घूमती रही। सचमुच किसी को माफ़ कर देने से मन कितना हल्का और खुशी से भर जाता है।
2: सच बताऊं, मेरा भी मन जैसे हल्का होकर हवा में उड़ने लगा है।
0: कटुता, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे समता बोरेकर, अपर्णा सिंह, नलिनी गहलोत और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सेनेगल में पोलिश मिशनरी धम बहन की कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है। मत्ती अध्याय 19 पद संख्या 14। मिशनरी सिस्टर क्रिसोलोगा मिंख का जीवन यीशु के इन शब्दों से मेल खाता है। पुलार भाषा में नेने सुकाबे का अर्थ है बच्चों की माँ। ये नाम पोलिश मिशनरी सिस्टर क्रिसोलोगा मिंख SMCB के साथ जुड़ा है, जिन्होंने सेनेगल के वेलिंगारा में बच्चों के लिए एक कुपोषण केंद्र खोला है। बचपन से ही सिस्टर क्रिसोलोगा के दो सपने थे, एक नर्स बनना और एक मिशनरी बनना। दोनों ही सपने उनके धर्म संघ बुलाहट में पूरे हुए। उन्होंने संत चार्ल्स बोरोमियो की दया की धर्म बहनों के धर्म संघ में प्रवेश किया, जहाँ तीन परम्परागत व्रतों के अलावा एक चौथा व्रत भी लिया जाता है, करुणा का व्रत। यही व्रत सिस्टर क्रिसोलोगा के मिशनरी बुलाहट का आधार स्तंभ बन गया। सेनेगल में मिशनरी के रूप में पहले दिन से उन्होंने गरीबी और भुखमरी का सामना किया, खासकर बच्चों के बीच। वार्षिक पोषण रिपोर्ट के अनुसार सेनेगल में 5 साल से कम उम्र के 10 में से एक बच्चा बहुत ज्यादा कुपोषण से जूझ रहा है और 6 से 23 महीने के सिर्फ 10% बच्चों को ही ठीक ठाक खाना मिल पाता है। इसके अलावा बच्चे पैदा करने की उम्र वाली 52% औरतें एनीमिया से जूझ रही हैं। इसलिए भूखी माताएं बहुत कम वजन वाले बच्चों को जन्म देती हैं, जिससे बच्चों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। सिस्टर क्रिसोलोगा बताती हैं, जब वे वेलिंगारा क्लिनिक में नर्स के रूप में सेवा दे रही थीं, माताएं अक्सर अपने बच्चों के साथ आती थीं। बच्चे मुश्किल स्थिति में होते थे। कोल्टा का दौरा करने पर उन्होंने वहां कुपोषण के शिकार बच्चों का केंद्र देखा, जिसको उनके ही धर्म संघ द्वारा खोला गया था। तब उन्हें महसूस हुआ कि वेलिंगारा में भी ऐसे ही केंद्र की जरूरत है। 13 सितंबर 1993 को सिस्टर ने वेलिंगारा में कुपोषित बच्चों के लिए सेंटर शुरू किया। शुरू से ही इसके विकास में कई चमत्कार हुए। मिशनरी बहन याद करती हैं कि शुरू में सिर्फ 2 छोटे कमरे थे, एक ऑफिस एवं गोदाम का काम करता था और दूसरे में 8 बेड थे। पहली बारिश के बाद उस जगह में पानी भर गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि उन्हें एक नई जगह ढूंढनी होगी। वे महापौर के पास गए और महापौर ने उन्हें एक खाली बिल्डिंग दी। यह बिल्कुल अव्यवस्थित स्थिति में था, लेकिन उसमें बिजली और पानी था, इसलिए वे खुश हो गए। केंद्र में बच्चे चिकित्सा एवं पोषण पाने आते हैं। कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं और निर्जलित स्थिति के कारण रो भी नहीं सकते, और कुछ अर्ध सुस्त स्थिति में। धाम बहनों ने युवा माताओं को अपने बच्चों की देखभाल करना सिखाया। उन्हें उनकी आदतों एवं धारणाओं को बदलने में काफी समय लगा। ये माताएं गांव में स्वच्छ जल के बिना कठिन परिस्थिति में रहती हैं। कुछ लोग साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर चलकर धर्म बहनों तक पहुंचती हैं। पिछले कुछ ही सालों में लगभग 20,000 बच्चे केंद्र में आए हैं। दुख की बात है कि कुछ शिष्यों को बहुत देर से लाया गया। सौभाग्य से जैसे जैसे देश का सड़क और बुनियादी ढांचा विकसित हुआ, स्थिति में सुधार हुआ, मानसिकता भी धीरे धीरे बदलने लगी। महिलाओं ने ना सिर्फ अपने बच्चों की देखरेख करना सीखा, बल्कि अपनी गरिमा को भी महत्व देना सीखा। ईश्वर अपनी कृपा द्वारा लोगों के माध्यम से काम करते हैं। धर्म बहन याद करती हैं कि उनके पास हमेशा बच्चों के लिए खाना नहीं होता था, लेकिन ठीक उसी समय पर ईश्वर उनके रास्ते पर किसी न किसी को लाते थे। उदाहरण के लिए, फ्रांस में मिशेल नॉरेक्स के साथ एक मीटिंग से वेलिंगारा के बच्चे फाउंडेशन बनाने का रास्ता खुला, जिससे फंड जमा करने में मदद मिली। एक बार जब वे सड़क पर चल रही थी तो सोच रही थी कि उस दिन बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, थोड़ा सा चावल बाकी है, आगे क्या होगा, पैसे लगभग नहीं थे। अचानक सड़क के उस पार दो महिला पर्यटकों ने आवाज दी, बातचीत शुरू हुई और वे उन्हें अपना सेंटर ले गए। जब उन्होंने बच्चों को देखा तो वे फूट फूट कर रोने लगी, अपनी जेब से सारे पैसे निकाल दिए और उस दिन से उन्होंने उनकी मदद करना कभी नहीं छोड़ा। सिस्टर को कई बच्चे याद हैं, लेकिन एक कहानी उनके दिल में गहराई से बसी है। मिशनरी बहन याद करती हैं, एक दिन कोनियागी काबिले की एक 16 साल की मुस्लिम माँ आई। उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था और लड़की मुश्किल से सांस ले रही थी, ठंडी लग रही थी। उसका वजन सिर्फ 600 ग्राम था। माँ ने आंसुओं के बीच धीरे से कहा, नीनी सुकाबे, मेरी मदद कीजिए। मैंने उससे कहा, हम प्रार्थना करेंगे, हम जो कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। मैंने बच्चे को गर्म करने की कोशिश की और एक फीडिंग ट्यूब डालने में कामयाब रही। माँ ने दूध निकाला और धर्म बहन ने उसे एक सिरिंज से इंजेक्ट किया। दो महीने बाद छोटी बच्ची का वजन 3 किलोग्राम हो गया और वह खुद दूध पी सकती थी। यह एक चमत्कार था। 6 साल बाद उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा। उसकी माँ ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, देखो यानी सौकाबे है जिसने तुम्हें बचाया। इस तरह यहाँ कितनी जाने बची। सिस्टर ने सैकड़ों किलोमीटर दूर के गांव में झाड़ियों से होते हुए यात्रा की और खून की कमी से मर रहे बच्चों को मौके पर ही खून चढ़ाया। भले लोगों की मदद से धर्म बहन ने सेंटर को बड़ा किया और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक छोटा सा अतिथिशाला बनाया। जब उनसे उनके मुख्य सपने के बारे में पूछा गया तो सिस्टर क्रिसोलोगा मुस्कुराई और कहा, मेरा सपना है कि यह सेंटर बच्चों का हॉस्पिटल बन जाए और दुनिया में कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हमने पोलिश मिशनरी धर्म बहन सिस्टर क्रिसोलोगा मिंक की कहानी सुनी, जो संत चार्ल्स बोरोमियो की दया की धर्म बहनों के धर्म संघ के सदस्य हैं और सेनेगल में बच्चों की मदद के कारण बच्चों की माँ कही जाती हैं। कहानी में धर्म बहनों के द्वारा ईश्वर के दया का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जो एक सच्चे ख्रिस्ते के रूप में जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रेरणा देती है। कहानी को सिस्टर एलेना एसाकेन को SMCB ने लिखा है और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कटुता। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, मनुष्य का जीवन भावना प्रधान होता है। हम सब भावों से संचालित होते हैं। प्रेम, घृणा, क्रोध, क्षमा, हार जीत, श्रद्धा, संदेह का महत्व भावनाओं से ही होता है। किसी से प्यार होना सामान्य बात है, उसी तरह किसी से एक तरफा प्यार होना सामान्य है। लेकिन खुद को तकलीफ देना सही नहीं है। एक तरफा प्यार वाकई बहुत गहरा और अकेलापन देने वाला दर्द होता है, क्योंकि इसमें उम्मीद और अस्वीकृति का एहसास साथ चलता है। इसमें इंसान ना तो पूरी तरह आगे बढ़ पाता है और न ही पीछे हट पाता है। उस प्यार के रास्ते में आए अन्य व्यक्ति के प्रति मन में कड़वाहट या कटुता पाले जीवन की गाड़ी बढ़ती रहती है। जब भी उस व्यक्ति से आमना सामना होता है तो उस व्यक्ति के प्रति घृणा या कटुता बढ़ने लगती है। जाने अनजाने आप खुद को ही तकलीफ देते हैं। ऐसे में कटुता को समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय खुद के प्रति क्षमा भाव अपनाना और अहंकार को त्यागना है। मन का मैल और कड़वाहट मिटाने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा, और किसी की गलती को माफ करने से मन का बोझ हल्का होता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका कटुता।
1: मम्मी, अब हमने छिपकर तो कुछ नहीं किया ना? अमित ने अपनी मम्मी जया को सब कुछ बता दिया और मैंने आपको सब कुछ बता दिया, और यह भी नहीं छिपाया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं।
2: वीणा बेटा, मानती हूँ कि तुमने और अमित ने अपने अपने घर में सब कुछ बता दिया और हमसे कुछ नहीं छुपाया। यह बहुत अच्छी बात है और इसीलिए मैं अमित से तुम्हारी शादी के लिए भी तैयार हूँ।
1: मम्मी, आप तो शादी के लिए तैयार हैं, मगर अमित की मम्मी को न जाने किस बात की खुन्नस है हमसे कि हमारी शादी के लिए राजी ही नहीं हो रही है। आखिर न जाने कौन सी और क्या बात है मम्मी?
2: बात क्या है बेटा, एक गलत फहमी है बस।
1: ऐसी कौन सी गलत फहमी है जया आंटी को?
2: बेटा, किसी समय मैं

0: उसने बात करना बिल्कुल बंद कर दी, क्योंकि उसका मानना है कि तुम्हारे पापा को मैंने उससे छीन लिया। बस तभी से वह मुझसे नाराज रहने लगी है।
1: क्या मम्मी, जया आंटी भी अभी तक कॉलेज के दिनों में ही जी रही है। बरसों पुरानी बात को लेकर वह आज भी घूम रही हैं। जब जिन पापा की वजह से वह आज भी आपसे कटुता रखती हैं, वह पापा भी अब हमारे बीच नहीं रहे।
0: अब ये तो अपनी अपनी समझ की बात है बेटा।
2: देखा, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी शादी में मेरी मम्मी इतनी बाधा डाल रही हैं, तो कहीं हमें कोर्ट मैरिज ना करनी पड़ जाए।
1: नहीं अमित, तुम कुछ भी बोलो, कोर्ट मैरिज के पक्ष में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। ये भी कोई शादी हो यार।
2: मगर इसके सिवा और चारा भी क्या रह गया अब?
1: अच्छा अमित, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी मम्मी क्यों हमारी शादी के खिलाफ है।
2: तुम क्या जानती हो क्यों खिलाफ है मम्मी?
1: मुझे मेरी मम्मी ने बताया है कि जया आंटी और मेरे मम्मी पापा ये सभी एक ही साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। मेरी मम्मी पापा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, उधर तुम्हारी मम्मी भी मेरे पापा को बहुत पसंद करती थी।
2: ओह,
1: लेकिन पढ़ाई के बाद जब मेरे मम्मी पापा की शादी हो गई तो जया आंटी ने मम्मी से यह सोचकर कटुता पाल ली कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा को उनसे छीन लिया है। बस तब से ही जया आंटी ने मेरी मम्मी से बातचीत ही बंद कर दी है।
2: ओ तो यह बात है।
1: हाँ
2: तभी तो मैं सोचा करता था कि मैं अच्छा वाला कमा रहा हूँ, अच्छी नौकरी है मेरी, तुम भी अच्छा कमा रही हो और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, फिर तकलीफ किस बात की है?
1: आंटी ने मन में मम्मी के लिए जो कटुता पाल रखी है वही कटुता ही आंटी को हमारी शादी में बाधा बना रही है।
2: तुम सही कह रही हो शिखा, लेकिन क्या अगर हमने मम्मी की मर्जी के विरुद्ध शादी की तो क्या तुम तैयार हो?
1: हाँ अमित, मैं तो तब भी तैयार हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं आंटी और अंकल दोनों के आशीर्वाद के बिना शादी नहीं करूंगी। तुम कुछ भी बोलो यार अमित।
2: पापा ने तो कब से हाँ कर दी है, लेकिन बस मम्मी को मनाना ही बाकी रह गया है।
1: तो फिर अंकल को कहो ना कि वे आंटी को मनाएं।
2: तुम तो जानती हो मम्मी के आगे पापा की चलती कहाँ है।
1: फिर
2: चिंता ना करो तुम, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
3: देखो बेटा, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि शिखा जैसी लड़की मुझे पसंद नहीं है। फिर शादी के लिए दुनिया में क्या एक शिखा ही बची है तुम्हारे लिए? मैं उससे कहीं अच्छी लड़की से शादी करवाऊंगी तुम्हारी।
2: आखिर आपको शिखा पसंद क्यों नहीं है?
3: मैं कह चुकी हूँ, पसंद नहीं है तो नहीं है। हर एक चीज़ का कारण नहीं होता है।
2: और बिना कारण इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता।
3: मैं कह चुकी हूँ तुमसे।
2: तो फिर मुझसे ही सुन लो वह कारण जिसकी वजह से आप शिखा से नफरत करती हैं। और वह कारण है अपनी कॉलेज लाइफ में आपका शिखा के पापा से एक तरफा प्यार में पड़ना और उनका शिखा की मम्मी से शादी कर लेना। बस इसी बात को आपने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया, इसीलिए आप अपनी उस हार को मेरी शादी से मना करके अपनी जीत में बदलना चाहती हैं।
3: ये क्या कह रहे हो बेटा तुम?
2: मैं सच कह रहा हूँ माँ, कभी कभी अतीत पर पड़ी समय की धूल को वर्तमान की आंधी भी उड़ा देती है और अतीत एक बार फिर सामने होता है।
3: तुम सच कहते हो बेटा, पर मेरी समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं।
2: यह इंसान की फितरत है माँ, जब वह हालातों से हार जाता है और उनका सामना नहीं कर पाता है तो उनसे समझौता कर लेता है।
3: मगर जिस कटुता को मैंने सालों साल अपने दिल की दीवारों में कैद करके रखा है, एक ही झटके में उसे दिल से निकाल कैसे सकती हूं मैं?
2: आप किसी से नफरत और उसकी कटुता का बोझ कब तक यूं ही ढोती रहेंगी? आपने जब ये कटुता पाली होगी तब से लेकर अब तक नदियों में कितना पानी बहकर यहाँ से वहाँ हो गया और आप अब भी वहीं की वहीं खड़ी हैं।
3: मगर बेटा वो
2: आपने भी कभी प्यार किया है माँ, आपको उसी प्यार का वास्ता, किसी को पा लेने और किसी को खो देने की खुशी और दर्द आप अच्छी तरह से समझती हैं। मान भी जाओ माँ।
3: ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी खुशी में अब और अधिक बाधा नहीं बनना चाहती। कल हम शिखा के घर जरूर चलेंगे।
2: ओ माँ, यू आर अ ग्रेट मदर।
1: नमस्ते आंटी, आइए आइए। मम्मी देखो कौन आया है।
0: अरे जया, तुम आज यहाँ? आओ आओ बैठो।
2: नमस्ते आंटी।
0: नमस्ते बेटा। हाँ जया, और सुनाओ, आज मेरे गरीब

0: खाने पर कैसे? मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देख के।
1: वीणा, मुझे भी तुमसे मिलकर उतनी ही खुशी हो रही है। तो इस खुशी को गले मिलकर मनाओ।
0: कैसी हो वीणा तुम? अच्छी हूँ, तुम सुनाओ।
1: क्या सुनाऊँ वीणा, ये वक्त ही है जो एक दूसरे से अलग भी कर देता है और एक दूसरे से मिला भी देता है। मुझे माफ़ कर देना वीणा, मैं तुम्हारे दुख का कारण बनती रही।
2: और अब आपकी खुशी का कारण बनने जा रही हैं आंटी।
1: हाँ वीणा, मुझे भी शिखा बेटी और अमित का रिश्ता मंजूर है।
0: अरे बधाई हो जया, ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ही ली।
1: इतने सालों के बाद मैं आज रात हल्की होकर बहुत बहुत सुख की नींद सो पाऊंगी, वरना मेरे सीने पर एक बोझ सा था जिसके लिए मैं इतने सालों घूमती रही। सचमुच किसी को माफ़ कर देने से मन कितना हल्का और खुशी से भर जाता है।
0: सच बताऊं, मेरा भी मन जैसे हल्का होकर हवा में उड़ने लगा है।
3: कटुता, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे समता बोरेकर, अपर्णा सिंह, नलिनी गहलोत और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।